0: हाँ ये मेरे बाल और तो सब मतलब पसल से इंसान देखें थे मुझे आज तो राम रिचा लेके देखें से नहीं सुना ना उस तक आका ये पसल को तो रेडियो धाबिन का तो विज्ञापन बजी रहन से
1: तो सो भाई बाप ना ही ले गए और रेडियो धाबिन में विज्ञापन दिए रही आउ से
2: हजुर तपाई पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले रेडियो धादिङमा विज्ञापन दिइहाल्नुहोस् यसले तपाईको व्यापार मात्र होइन तपाईको परिचय पनि दिनेछ
3: धादिङवासीको लागि खुशीको खबर टीवीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला आउँदै छ गजरी बजार मासो पुस्ले बैंक अगाड़ी महाकुंभ मेला 2083 साल जेठ 24 गते देखि 30 गते सम्म तपाईसँग जुनसुकी कंपनी को मोटरसाइकल वा स्कूटर छ अब सजिलै टीवीएस सँग साट्नुहोस् आकर्षक फाइनेंस को सुविधा नया बाइक खरीद में विशेष कैश डिस्काउंट मन परेको बाइक को निःशुल्क टेस्ट ड्राइभ पनि आउनुहोस् साथमा नागरिकता र लाइसेन्स लिएर थप जानकारी को लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सुन्दर विश्वराल मोबाइल नम्बर 9848562088 विश्वराल मोटरसाइकल एन्ड अटो वर्कसप गजरी गाउँपालिका 1 गजरी बजार धादिङ टीवीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला अवसर नछुटाउनुहोस् मेला अवधि में गजरी पुग्नुहोस् विश्वराल मोटरसाइकल एंड ऑटो वर्कशॉप गजरी गाउँपालिका 1 गजरी बजार धादिङ संपर्क मोबाइल नंबर 9848562088

0: थप जानकारी को लागी 010-520-238 र 010-520-263 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
1: स्वस्थ समाज निर्माण को लागी शहीद मेमोरियल अस्पताल प्राली धादिंग बेसी द्वारा जनहित मा जारी सन्देश।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: जापानीज इन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क में संक्रमण होने लामखुट्टे टोकाई सर्ने एक प्रकार के गंभीर रोग हो। यह रोग जुनसुक उमेर समूह का मानस तर धेरे जसो 15 वर्ष मुनि का बाल बालिका में यह रोग बढ़ी देखि
1: संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा सुंगुर डुंगुर घुमा जस्ता जनावर टोके संक्रमित लामखुट्टे में मानस टोके में यह रोग सर्द तर मानस मानस में होने सर्दन
0: जापानीज इन्सेफ्लाइटिस रोग बच्ने उपाय
1: लामखुट्टे प्रकार बच्ने इस रोग बच्ने मुख्य उपाय हो।
0: हाँस कुखुरा सुंगुर बुंगुर घोड़ा जस्ता घर पालुआ पशु पंचीर व्यवस्थित ढंग ने घर देखि टाड़ा खोर में राखर सुरक्षित तरीका पालन कर
1: घर बाहर निस्कता खेत बारी में काम करा पूरा बहुला भैया लुगा लगाओ
0: घर को झाल ढोका में जाली राखे पानी बनने ठाने लामखुट्टे वृद्धि होने भाई घर वरीपरी पानी बनने खाल्डा बुद्ध तीर्ने कर
1: लामखुट्टे भुगाने धूप व मलम प्रयोग कर
0: सब झोल भित्र मात्र सुक्ने कर
1: याद कर रोग बच्चन को लगी 12 महीना को उमेर में जेई खोप लगन पर्च यदि यह खोप लिने छूटे 5 वर्ष को उमेर समय दुई खोप लगन
0: सकोधक जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिंग
2: जय माता मौला काली काली गंडकी र नारायणी ने घेरे नवलपुर जहां देवघाट को शेर में बस्छिन् 15 शताब्दी देखी प्रख्यात शक्ति प्रबल माता मौला काली का
3: मौलाकालिका माता को दर्शन सहज बनाएको छ मौलाकाली केबलकारले
2: मनमोहक दृश्यावलोकन का साथ सरल र केबलकार चढ़ी 5 मिनट में पुग्न सकिन्छ मौलाकाली का मंदिर
3: पवित्र देवघाट धाम कलकल बगिरहेकी नारायणी संगै चितवन र नवलपुर का सुंदर दृश्य एकै ठाउँबाट देख्न सकिने इलारी सोट मौलाकाली
2: केबलकार संगैको रोमाञ्चक यात्रा आरामदायी बसाई अनि स्वादिष्ट परिकार का लागि इलारी सोट मौला
3: धार्मिक पर्यटकीय गंतव्य मौलाकाली का मंदिर संगै इलारी सोट मौलाकाली केबलकार गैंडाकोट 1 नवलपुर
4: पार्टी विचार र व्यवसाय फरक फरक होलान्
5: जाति भूगोल र वेशभूषा अलग अलग होलान्
4: भाषा धर्म र संस्कृति भिन्न भिन्न होलान्
5: तर पनि समानता र न्याय सहितको विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने हाम्रो सवाल अभिन्न छ
4: त्यसैले आउनुहोस् लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध पालिका निर्माणका साझा एजेण्डामा हामी सँगसँगै हातीमालो गरौं
5: सृष्टि फाउन्डेशन र रेडियो धादिङद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: के तपाई भ्याट तथा अन्य विभिन्न करको हिसाब मिलाउन नजानेर हैरान हुनुहुन्छ कि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट कार्यक्रम माग गर्न प्रस्तावना तयार गर्नुपर्नेछ यदि छ भने सोलुसन हबलाई सम्झनुहोस् सोलुसन हब शान्त बजार धारिङदेखि फोन नम्बर 0105210053 मोबाइल नम्बर 98511000149 98511065001
7: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

दहारिङ एक्सेस समय गहर्ज का साथ है इंटरनेट अनलाइन को www.redharing.org मार्फत संसार भरकै साथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 8:30 बजेको खबरमा म वेक नमस्कार।